भारतीय संगीत द स्वीट मेलोडियस म्यूजिक फ्रॉम इंडिया ऑन द वॉइस ऑफ द पीपल एंड योर होस्ट इज मुरली कृष्णा. होप यू आर ऑल एंजॉयिंग दिस शो. Now, the next song I am going to play for you is from the 1977 movie Apnapan. It is composed by Lakshmikant Pyarelal and sung by Sulakshana Pandit and Kishore Kumar. Let us listen to this song.

चार्ट बस्टर सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा वॉज सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन. दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड ऑन फिल्म्स सेकेंड हीरो तारिक खान हु रोज टू फेम विद यादों की बारात विच वॉज रिलीज्ड इन 1973. बट ही कुड नॉट मेक दैट बिग इन बॉलीवुड एज एन एक्टर. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग.

यू आर लिसनिंग टू भारतीय संगीत. इन बॉलीवुड मूवीज देर आर सो मेनी सॉन्ग्स विच वर सॉन्ग बाय बोथ फीमेल एंड मेल सिंगर्स. इवन दो दे आर द सेम सॉन्ग्स, दे पोर्ट्रे आइदर हैप्पीनेस और सैडनेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मूवी. दिस हैफ इज अबाउट दो सॉन्ग्स. आई विल प्ले द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कुदरत. Personally, I like the female version and it was sung by classical singer Parveen Sultana. She got the Filmfare Award for this song.